रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ू।
4: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
5: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
6: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM हर दिल।

0: निगर नहीं शराब
1: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।
1: नीला,
2: प्लीज रवि, मैंने कह दिया ना, मैं तुमसे कभी बात करना नहीं चाहती। नेवर।
1: नीला सुनो, नीला
2: नो,
1: प्लीज नीला मुझे माफ कर दो। नीला, अरे बाबा ऑफिस से आने में देर होगी, मैं क्या करता।
2: मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मेरे पीछे पीछे मत आओ। रवि, मैं कहती हूँ मेरे पीछे मत आओ।
1: नीला
3: ना रवि,
4: लोगों के प्यार के किस्से

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चिनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा

Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन

4464 1800 180 7178 1800 180 7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है।

0: और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। Let's do it together. Let us prove it together that we are responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: चलो चलो चलो लेट हो गए, ले भाई चाबी।
1: सर ऑन स्टेज 5 मिनट्स।
0: ओके तुम्हारी मैं जाऊँ। लगता है रूम में रह गए।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464-1800-180-7

1-800-180-7199. श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026, जय बाबा बर्फानी।

0: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे है।
1: व्हाट्सएप पे
0: तभी व्हाट्सएप
2: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस।
1: मोबाइल।
3: जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: Chinar beats with Harshadeva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन
2: रेडियो चुनार।

0: हाय, मैं हूँ आरजी ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 एफएम।
1: दोस्तों, आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सएप और साथ ही साथ अपने वॉलो शेयर सब्सक्राइब करना है रेडियो चनार के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स को। जी हाँ, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स पर जाइए, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब का बटन दबाइए। याद रखिए, मेरे हजूर कमेंट्स में प्यार दे जरूर, क्योंकि आप ही का प्यार जब बनाता है रेडियो चनार को सही मेरे यार। डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या एप स्टोर से। आप डाउनलोड करते ही हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। जॉक्सियस प्लीज लॉग इन करें www.radiochanar.com पर। आप सुन रहे हैं मजेदार शो दोपहर के 12 बजे तक। ये तीज बुत कहीं जाना नहीं, कोई बहाना नहीं, हर दिल की धड़कन को आपने है धड़काना तो मेरी जान ऐसा होगा कि धड़काना नहीं। मिर्जा गालिब वाली शायरी रेडियो चनार फॉर जॉक्सिस के साथ मजेदार शो व्हाट्सएप मेरी जान। सिटी हक्ड, धड़काते रहो।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: दोस्तों, रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर वायरल ऑन व्हाट्सएप पे वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर हम आप तक पहुंचाते हैं वायरल अपडेट्स व्हाट्सएप पे। अब कहते यानी और लोगों ने भी ये बात है मानी कि जानी वायरल है तो वह सफर आ ही जाएगा। जी हाँ, रिसेंटली असम वॉज फट हिट विद फ्लड्स और वही अगर हम देखें तो देयर आर सम ब्रेव हार्ट्स जिन्होंने असम की भरपूर मदद की। जी हाँ, चाहे हम सोल्जर्स की बात करें, डॉक्टर्स, वॉलंटियर्स, बोट ऑपरेटर्स, एवरी लोकल जो है असम की फ्लड्स में रिलीफ और होप की तरह नजर आया है। वही कुछ ऐसे नाम जिन्होंने आउट ऑफ बॉक्स जाकर असम के लोगों की मदद करी है, जिनमें से है मुकेश अंबानी जिन्होंने 25 करोड़ की मदद की और नीता अंबानी ने 21 करोड़ की। गौतम अडानी ने की 11 करोड़ की मदद, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 5 करोड़ की। कैरी मिन्नाथ जो कि एक फेमस यूट्यूबर है, उन्होंने 13 लाख की मदद की और आर्यन केल्विन ने की 13 लाख की मदद। कार्तिक आर्यन ने की 1 करोड़ की मदद, वही सिंगर गुरु रंधावा ने की 5 लाख की मदद। सज्जन जिंदल जिन्होंने 5 करोड़ की मदद की और बारुद्दीन अजमल जिन्होंने की मदद 2 करोड़ की। जाहिर सी बात है, हम भारतीय ही भारतीय के अपने देशवासियों के काम आते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। जब किसी पर आपदा आन पड़ती है, कोई मुसीबत आन पड़ती है, तो हम सब का फर्ज है कि हम न दिन रेखे न रात बल्कि उस प्रॉब्लम पे कर दे अलगार। रेडियो चुनाव 90.4 FM, ये था वायरल।

0: बच्चे ज़ूस कौन आया
1: दोस्तों रेडियो चुनाव 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 अपडेट्स जी हाँ, एक दिन के हाल्ट के बाद अमरनाथ यात्रा जो है फिर से जो एक साइड से बंद है जम्मू बेस कैंप से लेकर अमरनाथ जी का जो रास्ता है वो यात्रा जो है उसे बंद रखा गया था सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। अब नॉर्मली जो है यात्री जम्मू बेस कैंप से लेकर अंडर प्रॉपर सिक्योरिटी दे आर लीविंग टूवर्ड्स श्री अमरनाथ जी यात्रा केव। और आपको बताते चले कि साथ ही साथ हरी मुबारक की जो रिचुअल्स हैं उनकी प्रिपरेशन भी रैंप अप हो रही है। चार लाख 70,000 के करीब जो यात्री हैं अपनी यात्रा संपूर्ण कर चुके हैं और वही फ्रेश ब्रिज जो है ऑलरेडी भगवती नगर से निकल चुके हैं।

0: साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: हाय मैं हूँ आरजे ज़ू।
2: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
3: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
4: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की धड़कन।
5: दोस्तों हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है इफ इट्स यू वर्सेस यू वन ऑफ यू मस्ट डाई।
6: अच्छा करा मैं नोट डाउन ऑन बोर्ड पे रोज बने मेरे शो पे शो

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: जूस। कौन आया?
1: रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मैं हूँ जॉक ज्यूस और आप सुन रहे हैं मजेदार शो व्हाट्स अप
2: जूस।
1: जी हाँ, 888-999-0494 नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है। 888-999-0494 तो यही क्यों कॉल करे व्हाट्सएप, यही क्यों करे टेक्स्ट मैसेज। कॉल व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज आप डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मिलूंगा ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो के नाम से। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन, मुझे पता है मेरी जान क्या आपको खाना है आज के टॉपिक वाला पान। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में जो मौजूदा लैंग्वेज है, जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, उसकी कितनी भाषाएं कहाँ कहाँ कैसे कैसे बोली जाती है और क्या है इन भाषाओं का महत्व, हम आज बात करेंगे। जी हाँ, आज बात होगी इंडिया एंड इट्स लैंग्वेज की। लोकल इंडियन लैंग्वेज आज के वो सब शो का टॉपिक, आज लोकल इंडियन लैंग्वेज की बात होगी। तो आप भी अपनी जो व्यूज है, इमोशंस है, थॉट्स है, हम तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि मिले जो सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। रेडियो चनौर की हॉट फ्रीक्वेंसी पर मैं हूं जॉक्सी, बने रहें, सुनते रहें हर दिल की धड़कन को तड़काते।

0: Cheers.
1: और धड़कन रेडियो चैनल 90.4 FM मेरे यार आपका प्यार बनाता है रेडियो चैनल को सही। यहाँ भी वरीय नहीं चलेगा नहीं, क्योंकि आप ही ने धड़काना हर दिल की धड़कन को, और धड़काने के लिए 8888-9904-904 इज द नंबर। नौ सिफर चोर तो एक यू कॉल करे तो व्हाट्सएप या है क्यों करे टेक्स्ट मैसेज। आज बात हो रही है लोकल इंडियन लैंग्वेज की, और वही अगर हम बात करें तो तीन ग्रुप्स में बांटा जाता है इन लैंग्वेज को, जो कि बताया जाता है दैट आर द बेस ऑफ एवरी लैंग्वेज इन इंडिया। यहाँ इंडियन गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है 22 मेजर रीजनल लैंग्वेज को जो कि बोली जाती है, जिसे रिकॉग्नाइज करता है 8th स्केड्यूल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हम इन मेजर लैंग्वेज ग्रुप्स की बात करें तो फर्स्ट इज इंडो आर्यन फैमिली, जो कि कवर करता है 74% ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें भाषाएं जो बोली जाती है अक्रॉस नॉर्दर्न सेंट्रल एंड वेस्टर्न रीजन्स में बोली जाती है, जैसे हिंदी, बंगाली, पंजाबी, मराठी एंड गुजराती। वही द्राविडियन फैमिली जो कि कवर करती है 20-25% ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि सदर्न इंडिया में बोली जाती है भाषाएं, उन्हें तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम इनमें शामिल है।

0: और वही अगर हम बात करें तो सिनोटेबियन फैमिलीज जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज इस पॉपुलेशन में शामिल है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहाँ पर बोली जाती है सनातली, खसी और मणिपुरी। जी हाँ, भारत, और भारत इस तरह से डेवलप्ड है कि हर एक इस भारत में प्यार, इज्जत, मान सम्मान पाता है, चाहे भाषा कोई भी हो, रीजन कोई भी हो, सबका दिल एक ही सिंक में धड़क कर बोलता है वंदे मातरम। रेडियो चैनल 90.4 एफएम पर मैं हूँ जागजू, आज बात हो रही है इंडियन लोकल लैंग्वेज की। आप भी बने रहें, सुनते रहें, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहें।
1: निट बघू बायो भ्या बायो संग

0: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम।
1: तो हर दिल के दर का रेडियो चिनार 90.4 एफएम मजदार शो व्हाट्सएप व्हाट्सएप शो में अगली पेशकश टेक टॉक्स बॉलीवुड न्यूज नहीं बल्कि आज फ्राइडे है। आज हम पहुंचाने वाले हैं आप तक आई फील गुड A show dedicated to the lovers of Western music only on the hottest frequency. City Hacked, that got it up.

0: मैं हूं आरजे ज़ियूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Only on Radio Chinar 90.4.
4: I feel good.
3: A new vibe for the lovers of Western music with me, RJ Zeus.
5: मैं हूँ RJ Zeus. जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: आई फील
3: गुड ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4।
4: आई फील गुड,
3: अ न्यू वाइब फॉर द लवर्स ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक विद मी आरजे ज्यूस।
2: But every beat is going to rock you, baby. This is Western Musical Show. I feel good. I welcome you all here. As I promised that next 1 hour will be rocking. So here it starts. It's Neta and it's Not Yet. I'm Zeus and let's rock on.

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: Beats on repeat. Beats on repeat. Show चुनार beats आप enjoy कर रहे हैं only on radio चुनार 90.4 FM. ये सारी बातें हो रही है, मस्ती मजाक fun भी है, बहुत कुछ है, यानी कि दिल में कुछ छुपा हुआ है जो आप तक पहुंचाना बाकी है. अब मसला ये है, दिल से मजबूर नहीं, ये रिश्ता ही ऐसा है कि निभाना अभी बाकी है. तो देखिए, निभाने आई हूँ, बात करने आई हूँ, एंड स्पेशली जब जुमतुल मुबारक होता है तो तब हम ट्राई करते हैं कि बराबर 12:30 से 2 बजे तक हम डिवोशनल ट्रैक्स आपके लिए चलाएं, आप नाते कलाम सुने, सूफी कलाम सुने, दुआ करें हम सब के लिए, अपनी पूरी कौम के लिए, हर एक इंसान के लिए, कि यूँ ही हम एक दूसरे के काम आते रहें, इंसानियत के लिए काम करें और सच में अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें. बीच और रिपीट है, ढेर सारी बातें हैं और आपके भी जज्बात, हालात, ख्यालात, ये सुनना बाकी है.
1: तू मेरी हो के भी चाहत है तू.
0: देखिए, मैं तो हूँ और आपका होना भी जरूरी है और बैक टू बैक सॉन्ग्स जारी है. जी हाँ, असी भी तेरे नाल ही जावांगी बराबर 2 बजे तक. आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनार 90.4 FM, बैक टू बैक सॉन्ग्स ऑन योर रेडियो चुनार 90.4 FM.

लो जी, पुकारा आपने और मैं साथ निभाने आ गई और हम बात करने जा रहे हैं नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो अभी सिंगल लेन ट्रैफिक है और सिंगल लेन ट्रैफिक की वजह से काफ़ी स्लो मोमेंट ऑब्जर्व किया गया। अनमादी स्लिपरी रोड है, कंडीशन थोड़ी ख़राब हो चुकी है क्योंकि ऑनगोइंग शूटिंग स्टोन्स और रिस्टोरेशन जो वर्क है वो चल रहा है नेशनल हाईवे पे। सो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये अपडेट दिया है कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं सो बी केयरफुल, आज सिंगल लेन ट्रैफिक है तो आपको पता करना चाहिए। जो TCU जम्मू है, TCU श्रीनगर है, उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि कब आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, क्या है अपडेट आज का, आप कहाँ से, यानी कि आप श्रीनगर से जम्मू जा सकते हैं, जम्मू से श्रीनगर, वो आप पता कर सकते हैं। एंड बी वेरी वेरी वेरी केयरफुल क्योंकि हमें ऑल्टरनेट रूट्स भी पता है। जो लाइट मोटर व्हीकल्स है वो मुगल रोड ऑल्टरनेट जो रीजन है वहाँ से जा सकता है क्योंकि परमिट्स भी ज़रूरी है और ट्रैवल के लिए हैवी रेगुलेटेड जो चीज़ें हैं वो ले जाना भी मना है। यानी कि अभी के लिए क्योंकि रोड ख़राब है, हालत ख़राब है, बट ये है कि आज सिंगल लेन ट्रैफिक है तो आप उस हिसाब से अपना प्लान बना सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपको सीट बेल्ट नहीं लगा है तो मैं मानती हूँ कि आप रिस्पॉन्सिबल तो है, बस थोड़ा से आप हड़बड़ी में गड़बड़ी कर सकते हैं। सो वो चीज़ ना कीजिए, सीट बेल्ट लगाइए और ड्राइविंग के सर्विस को फॉलो कीजिए और गलत जगह पे ओवरटेक मत कीजिए क्योंकि अगर आपने हीरो सच में बनना है तो हीरो वाले काम भी तो करने हैं। इन्जॉय कीजिए इस ट्रैक को, साथ तो मैं निभा रही हूँ, आपके साथ ही हूँ बराबर 2 बजे तक। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं 8999904 पर कॉल कीजिए, टेक्स व्हाट्सएप कीजिए, शो चुनार बीस का ऐसा बन जाएगा।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: जुम्मतुल मुबारक, रेडियो चुनार पर आप और हम हो रहे हैं फैसियाब, सुनकर हमद बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार 90.4 FM।

शूट इन आवर बीट्स पर स्टार्ट हो चुका है अभी डिवोशनल. हम आपके लिए चलाते हैं डिवोशनल ट्रैक जिसमें सूफी गलाम, नातिया गलाम और स्पेशली जमातुल मुबारक के दिन हम 12:30 से लेकर 2 बजे तक आपके लिए डिवोशनल ट्रैक्स चलाते हैं. हम ट्राई करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में बिताए, अपने अपनों के लिए दुआ करें, हर एक इंसान के लिए दुआ करें और अपना दिल साफ रखिए, माफ़ कीजिए, माफ़ी मांगिए. बस यही है कि अपना दिल जो है वो मुतमईन और पुरसकून रहना चाहिए. फिलहाल के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, मुझे बताना चाहते हैं, टॉपिक के रिलेटेड भी हम बात करेंगे, 8899904904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो चुना और बीट्स का हिस्सा बन जाइए.

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैसियाब, सुनकर हम्द बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हम्द बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जी हाँ, हमारी भी कोशिश जारी है कि आप तक हम डिवोशनल ट्रैक्स पहुँचाए, सूफी कलाम, नादिया कलाम। आप सुन रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रावेगेंट वेडिंग्स इन कश्मीर। जो लैविश वेडिंग्स हो रही है, जो भिद्दत बढ़ रहा है अभी हमारे कश्मीर में, वो कितने सारी चीज़ों में, अनवांटेड चीज़ों में हम मनी स्पेंड करते हैं, और जो लोग जो वो एफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो फिर उसके कारण शादी ही नहीं कर पाते और मजबूर हो जाते हैं, बहुत सारी तकलीफ वो झेल लेते हैं। तो ज़रूरी है ये हम समझें कि क्या चीज़ें हो रही है अभी, और सोशल मीडिया की वजह से क्या चीज़ें अभी, क्या लहर अभी फैल रही है कि कितना ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ गया है शादियों का, और कितना लोग डर रहे हैं शादी करने से। बात हो रही है, आप भी शो का ऐसा बन सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुँचा सकते हैं। 8999-04904 टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाएगा। आप बराबर 1:30 बजे, फिलहाल शो चुनार 20 चल रहा है, आप शो का हिस्सा बन जाए।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक। रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैसियाब, सुनकर हम्द बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हम्द बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब, सुनकर हमदे बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक। रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब, सुनकर हम्द बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक। रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब, सुनकर हम्द बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हाय, मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 एफएम और शो शुरू हो चुका है हंगामा। हंगामा जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, क्या बाजिंग है और लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता। अभी के लिए शो शुरू हुआ है, बहुत सी बातें होंगी, बराबर चार तक आपका और मेरा साथ बना रहेगा। अपडेट्स क्या हैं, वन मिनट फैक्ट हो, ट्रेंडिंग रील्स और मीम्स हो, या उसके अलावा हर दिन का स्पेसिफिक टॉपिक हो या हो गेम ऑन, हर चीज़ मिलती है आपको शो हंगामा पे। मैं हूँ असरा, सुन रही है रेडियो सुना 90.4 FM। मैं बस यूं कही और यूं वापस आई।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। और अभी की बात करें तो अभी वक्त है कि हम बात करें कि क्या है ट्रेंडिंग, क्या लोग देखना सुनना पसंद कर रहे हैं। और आज आवारापन 2 की हर जगह बात हो रही है। क्यों? क्योंकि कुछ ही टाइम बाद ये मूवी रिलीज होगी इन द थिएटर्स और कह रहे हैं कि बस जो आवारापन है वो फिर से शुरू होगा। फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए आवारापन 2 का एक नया गाना, बट वो गाना जिसका रिश्ता सच में पुराना है। ये तेरा मेरा रिश्ता पुराना। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार। मैं बस यूं कही और यूं वापस आई।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: हाय, मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और अभी वक्त है कि हम बात करें रेलवे अपडेट के बारे में। और जो रेलगाड़ी हमारे यहाँ चलती है, यानी कि बारामूला, बड़गाम, बानीहाल, संगलदन, कटरा, और ये जो रेलवे लिंक है कश्मीर, जम्मू कश्मीर रेलवे लिंक। और सबसे पहले बात करें जो भी अपडेट्स, अगर आपको लाइव अपडेट ज़रूरत है, लाइव लोकेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन बिटवीन स्टेशन, रेल वन इज़ द ऑफिशियल इंडियन रेलवे ऐप्स जहाँ पर आपको पता चल सकता है कि क्या चल रहा है। इसके अलावा बात करें जो तीन ट्रेन सस्पेंडेड थी कुछ टाइम के लिए, कैंसल थी कुछ टाइम के लिए, वो अभी भी कैंसल्ड हैं एंड दे इट विल बी द सेम अप टू 14th of August। इसके अलावा जो भी ट्रेन आफ्टरनून में है फ्रॉम बारामूला टू बड़गाम और बानीहाल, यूजुअली जो भी ट्रेन रहती हैं वो 3 के अराउंड रहती हैं, 2:50 के अराउंड या 3:45 एंड देन 5:10 के अराउंड जो भी ट्रेन है वो कुछ थोड़ा बहुत 10-15 मिनट डिले हो सकता है। इसीलिए यू हैव टू बी ऑन योर रिस्पेक्टिव स्टेशन 10-15 मिनट पहले, ताकि आपका जो ट्रेन शेड्यूल है या आपका जो ट्रैवल प्लान है वो कुछ भी ऑल्टर ना हो या कोई भी ऐसी अनहोनी ना हो कि यू नो दैट ऑलमोस्ट आई गॉट द ट्रेन वाला ऑप्शन वो रहे ही ना। इसके अलावा यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे हैं या आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू फॉलो द SOPs एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ कि सवारी खुद की और सामान की खुद जिम्मेदार है।

और देखिए मौसम बहुत ही वो उदास सा मौसम है. आई वुड से नॉट जस्ट उदास बट वेरी क्लाउडी एंड बहुत अच्छा लगता है ऐसे मौसम में. इफ़ यू आर ड्राइविंग और यू आर लिसनिंग घर पे, ऐसे ट्रैक्स बहुत खूबसूरत होते हैं. ये ट्रैक है ज़रा ज़रा फ्रॉम द मूवी रहना है तेरे दिल में.

0: डायलॉग की वजह से पूरी पूरी मूवी आप पहचान पाते हैं, ठीक है। तो इस जो मूवी में एक काफ़ी ट्रेंडिंग डायलॉग है अभी भी, इट्स 2026, अभी भी वो डायलॉग काफ़ी ट्रेंडिंग है, दैट इज़ कि मैं दिल्ली हूँ मैडी से।
1: ये दूरी कहती है पास मेरे आजा।
0: देखिए मैं तो आपके पास हूँ ही, चार तक बराबर आपके और मेरे विचार एक साथ यहाँ रेडियो चिनार पे, सही है मेरे यार। बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें हैं, और कुछ ट्रैक से बाद हम बात करेंगे कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, द टॉपिक ऑफ द डे। मैं हूँ आसरा, सुनते रहिए रेडियो चिनार।
1: जरा

0: तानी। तानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: कुछ ना कहो।
1: हाय, मैं हूँ आस्था और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन। देखिए, हम कुछ नहीं कहेंगे तो मसला हो जाएगा, बट अभी की बात करें तो अभी कहना ज़रूरी है, क्योंकि अभी आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ द टॉपिक फॉर टुडे। आज हम बात करने जा रहे हैं डेटिंग ऐप्स के बारे में। देखिए, डेटिंग ऐप्स बुरे भी नहीं हैं और अच्छे भी हैं, या क्या है क्या नहीं है वो तो पता चलेगा जब आपको बताएंगे कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं। या अगर बात करें कि जो फेमस ऐप्स हैं जो डेटिंग से रिलेटेड हैं उनके बारे में बात होगी, कश्मीर में क्या पर्सपेक्टिव है और लोगों का क्या कहना है। और ये भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि डेटिंग ऐप्स को एक इंसान नेगेटिव वे में ही ले, कि इट इज़ समथिंग यू नो कि कैजुअल रिलेशनशिप्स को प्रमोट करना या हुकअप्स को प्रमोट करना। बट अभी की बात करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बात करें कि अभी सोशलाइजेशन इन पर्सन मिलना काफ़ी कम हो गया है, तो लोग एक्चुअली डेटिंग ऐप्स का या निकाह ऐप्स का एक सहारा लेते हैं ताकि वो अपने पसंदीदा जो आप उनका इंटरेस्ट है लोगों में उनसे मिल पाए।

और देखिए जो सॉन्ग अभी चल रहा है, द ट्रैक दैट इज प्लेइंग इन द बैकग्राउंड, दैट इज फ्रॉम द मूवी 1942 अ लव स्टोरी. अनिल कपूर, मनीषा कोहलियाला, कुमार सानू की आवाज़, जावेद अख्तर के लिरिक्स, और गाने का नाम है कुछ ना कहो. अब पुराने ज़माने की मूवीज़ में एक बहुत ही एक ऐसी चीज़ होती थी जो वो बहुत ही आर्टिस्टिक है कि किस तरह से जो ये गाना है कुछ ना कहो, इट्स अ हैप्पी वर्जन ऑफ द सॉन्ग. एंड देर इज अनदर सॉन्ग That has the same title, कुछ ना कहो, and basically कुछ कुछ जो lyrics है वो भी same है, जो chorus है वो same है, but वो एक sad song है.

सो बेसिकली पहले पहले क्या होता था, जो 90s की मूवी है या 2000s की मूवी है, उनमें ऐसी चीज़ होती थी कि एक्चुअली दोनों वर्जन्स ऑफ द म्यूजिक, दोनों वर्जन ऑफ द सॉन्ग बनाया जाता था ताकि एक इमोशन, एक स्टोरी डेवलपिंग, एक कैरेक्टर बिल्डिंग दिखाया जाता था. और ये सिर्फ 1942 वाला लव स्टोरी मूवी से नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स हैं जो आपके सामने आएंगे 90s की मूवीज या 2000 की मूवीज, जहाँ पे एक्चुअली ये चीज़ हुई है कि दोनों वर्जन रिकॉर्ड किए गए हैं और रिलीज भी किए गए हैं. देखिए, दिस इज जस्ट अ छोटा सा बॉलीवुड का जो हिस्ट्री, आर्ट, म्यूजिक. बट अभी के लिए आप बने रहिए, जुड़े रहिए ओनली ऑन द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर 90.4 FM. और आज हम डेटिंग ऐप्स के बारे में बात कर रहे हैं. अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं. 8899 904 904 इज नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: हाय, मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और जैसा कि आज

हम डेटिंग एप्स के बारे में बात कर रहे हैं. क्या है साइंटिफिक लाइक जो भी ऑपरेशन होते हैं इसमें, टेक्निकल ऑपरेशंस होते हैं, या क्या है एक्चुअल डेटिंग एप्स? क्या है डेटिंग एप्स? एक हिसाब से एक डिजिटल मार्केट प्लेस है, एक वीडियो गेम की तरह है, जहाँ पे आपको पता नहीं होती है कि बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं या मैकेनिक्स हैं जो आपको साइकोलॉजिकली बंद कर देते हैं उस साइकिल में, कि आपको लगता है बस कि मुझे किसी पर किसी तरीके से एंगेज होना है इस ऐप पर, मे बी उससे आई विल फाइंड द लव ऑफ माई लाइफ. बट ऐसा कुछ होता नहीं है, बल्कि बहुत कम होता है. अगर 10 लोग हैं, 10 में से एक इंसान मे बी गेट the person who they want to be with, not even out of 10, like out of 50 one person will get it, but baki jo log hote hain wo bas subscriptions or paid version apps khareedte reh jate hain. बहुत सारे जो अभी ऑन गोइंग इंडियन डेटिंग ऐप्स है, दोज़ार टिंडर है, बम्बल है, हिंज है, और एक्चुअली वो ह्यूमन कनेक्शंस प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि इट्स जस्ट कि लाइक ये मैं नहीं कह रही, ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जो टेड एक्स पे भी बात कर चुके हैं. उनका ये कहना है कि ये जो डेटिंग ऐप्स, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो एक्चुअली ह्यूमन कनेक्शंस को नंबर्स में बदल देते हैं, मैचिंग प्रेफरेंसेस पे, और एक्चुअली मोनेटाइजेशन मॉडल में, ताकि जो फाउंडर है किसी भी डेटिंग ऐप का उसका बेनिफिट हो. और जैसा कि अभी बहुत सारे ऐसे टर्म्स सामने आई हैं जिनकी वजह से पता चलता है कि मॉडर्न डेटिंग ऐप्स क्या टर्मिनोलॉजी यूज करता है. गोस्टिंग, गोस्टिंग का मतलब होता है कि आप किसी को अचानक से बिल्कुल कट ऑफ कर दो और कोई भी वापस जो रिस्पॉन्स है उन्हें ना दो. उसके बाद आता है ब्रेड क्रम्बिंग, यानी कि आपने कभी सोचा होगा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि ये टर्मिनोलॉजी सिर्फ और सिर्फ डेटिंग ऐप्स पर नहीं, बल्कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी रियल लाइफ में इन पर्सन जो भी हमारे ह्यूमन कनेक्शंस हैं वहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है कि कोई इंसान आपको थोड़ा बहुत अटेंशन देता है, उसके बाद वापस वो अटेंशन आपसे छीन लेता है, और फिर कोई अटेंशन नहीं, कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं करता. बट वो, उसे हम ब्रेड क्रम्बिंग कहते हैं, यानी कि वो अपना कुछ हिस्सा अटेंशन का आपकी तरफ दे तो रहा है, बट रियल इंटेंशन से नहीं, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ उस साइकिल में, टॉक्सिक साइकिल में बिजी रखने के लिए. इसके अलावा अगर बात करें तो सिचुएशनशिप भी एक बहुत बड़ी टर्म है आजकल की जेनरेशन में. और सिचुएशनशिप का मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, बट आप एक दूसरे को लेबल नहीं दे रहे, यानी कि आपको मालूम नहीं है कि आप पति पत्नी हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, या सिर्फ दोस्त हैं. देखिए, राज की तो बात नहीं है, बट इनके बीच में, तेरे मेरे बीच में क्या है वो समझ नहीं आता सिचुएशनशिप में, और कोई लेबल नहीं देना चाहता बिकॉज ऑफ द फेयर ऑफ कमिटमेंट और वट एवर. दिस इज द सीन ऑफ जेन जी डेटिंग लाइफ. इट्स सैड बट इट्स ट्रू.

मैं वहाँ स्टार सुनता रही हूँ रेडियो सुनार, और आप भी बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, इफ़ यू हैव डेटेड और यू वांट टू डेट, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं एंड आपका इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. मैं वहाँ स्टार सुनता रही हूँ रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
1: पानी, पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक

0: है और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

हाय मैं हूँ अस्टा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और जैसा कि देखिए आज हम बात कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि कैसे डेटिंग एप्स एक्चुअली एक मनी गेटिंग एंड बाइंग ऐप है जहाँ पे मोनेटाइजेशन होती है हर चीज़ की, ह्यूमन कनेक्शंस की। बट कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव साइड तो ज़रूर है, और वो पॉजिटिव साइड क्या है? वो ये है कि बहुत सारे लोगों को एक्चुअली अपनी लव ऑफ लाइफ मिला है। अब जिनको मिला है उनके लिए हम खुश हैं, और जिन्हें नहीं मिला है उनके लिए चाहिए कि वो अपनी लाइफ में रियल कनेक्शंस को फॉलो करें। और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो 8899904904 इज नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप।

लेकिन रफ्ता रफ्ता तो नहीं बल्कि अपने टाइम पे हुआ है, यानी कि गेम ऑन शुरू हो चुका है, जहां मिलता है आपको स्पोर्ट्स का अपडेट, चाहे लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अपडेट हो। एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स, और कुछ ही ट्रैक्स के बाद बात करेंगे आज की अपडेट के बारे में। मैं हूं अश्रा, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM.
1: हाय, मैं हूँ अश्रा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

और आज का जो स्पोर्ट्स का अपडेट है दैट इज रिलेटेड टू बैडमिंटन. अश्मिता चहिला एंड रक्षिता रामराज ये दो एथलीट्स हैं, बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, इंडियन फीमेल बैडमिंटन प्लेयर्स जो एक्चुअली इंडियन वेमेन सिंगल्स खेल रहे हैं सेमीफिनाले एट द कोरिया मास्टर्स.

देखिए बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं, ऐसे एथलीट्स हैं, अभी कॉमनवेल्थ कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुआ है, और अगर आप बात करें कि अभी इंडियन एथलीट्स आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स एंड दैट इज सच अ प्राउड थिंग टू बी. मैं वास्तव सुन रही है रेडियो सुना 90.4 FM. आज के लिए बस इतना ही, कुछ फ्राक से बाद आपसे अलविदा लेंगे, तब तक के लिए आप भी जुड़ सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं. मैं वास्तव सुन रही है रेडियो सुना 90.4 FM. एंजॉय कीजिए.

0: अपने गज्जा को बोल कि आज रात को मिठाई का डिब्बा आएगा, कल सुबह तक ब्लू बर्ड को दिल्ली में डिलीवरी हो जानी चाहिए।
1: रेडियो चुनाव 90.4 FM, गेम ऑन विद आरजे असरा, ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ना ना ना ना, प्यार की पुंगी तो नहीं बजेगी क्योंकि कल मैं वापस आऊंगी करने आप सबसे बातें, एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन और क्या क्या।
1: घुसू कहाँ से मसाला, लैला की खिड़की खुली है।
0: और देखिए अभी जा रही हूँ, कल वापस आऊंगी। और कल सैटरडे यानी कि एक स्पेशल शो रेडियो गर्ल्स, जहाँ मैं और दीवा साथ मिलकर बात करते हैं रिलेटेड टू वुमेन। अब मैं अभी जा रही हूँ और जाते जाते एक बहुत ही क्रेजी सा ज्ञान देना चाहती हूँ मैं कि ये क्या अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहिए। जरूरी है कि मेमोरीज बनाना और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना। हॉबीज आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड यू शुड ऑलवेज हैव गुड हॉबीज। मैं हूँ अस्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार। मैं बस जा रही हूँ, आज के लिए बस इतना ही। दिस वॉज ऑल अबाउट मी, दिस वॉज ऑल अबाउट शो हंगामा, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओवर एंड आउट।

0: पानी पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: आके पर ढूंढता रहा
1: हूँ। ऑलराइट, झुमका गिरारे बरेली के बाजार में। यू आर ट्यून्ड इनटू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर 90.4 एफएम रेडियो चिनार, हर दिल की धड़कन। शो का नाम है दिल की बात साहिल के साथ, आरजे साहिल मुजफ्फर इन द हाउस। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप एंजॉय कर रहे हैं। आज हम टूरिज्म सेक्टर के हवाले से कर रहे हैं बात। कश्मीर की बात करें, खूबसूरत तो है ही, और दैट्स द रीजन टूरिस्ट सेक्टर यहाँ का इवॉल्व हो रहा है विद ईच पासिंग डे। अक्रॉस द वर्ल्ड टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, आना चाहते हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से लेके फूड इंडस्ट्री, और घोड़े वाले हो चाहे पोनी वाले हो, या यहाँ पे होम स्टेज का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, एवरी वन इज यू नो अर्निंग देयर ब्रेड एंड बटर, एंड टूरिज्म सेक्टर इज ऑन बूम। आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी राय, आरा, सजेशंस एंड कोई भी एक्सपीरियंस आप हमें बता सकते हैं ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन। सुनते रहिए, लौट के आऊंगा।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

All right, आपने ट्यून इन किया है 90.4 FM हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव। टूरिज्म सेक्टर के हवाले से हो रही है बात। कश्मीर का जो टूरिज्म सेक्टर है, इट्स कंसिडर द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी अलॉन्ग विद द आर्ट एंड क्राफ्ट एंड हैंडक्राफ्ट्स ऑफ यू नो कश्मीर। और यहाँ का जो आर्टिस्टिक वर्क है उसके साथ साथ टूरिज्म का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करने में। और खुशाइन बात यह है कि सरकार के साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जो टूरिज्म सेक्टर को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं और नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर। और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में तो धूम मचाई है, वर्ल्ड क्लास नो स्टेइंग फैसिलिटीज़। और जहाँ का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वो उसमें इन्वॉल्व है। और कुछ लोग जो इस दुनिया के शोर शराबे से दूर कहीं खामोशी में रहना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारे लोगों ने ऐसे यू नो पिक्चरस्क्यू एरियाज़ में होम स्टेज का प्रबंध किया है कि लोग आते हैं दो दो तीन दिन, चार चार दिन अपनी फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ, खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ लेते हैं और यहाँ के कल्चर, यहाँ के ट्रेडिशन से लुत्फानंदोज़ होते हैं। बहुत सारे कॉटेजेस बने हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हट्स बने हैं इन यू नो माउंटेन्स, जो लोगों की वहाँ पे अपनी जो आसपास की ज़मीन थी उन्होंने उसको धीरे धीरे यू नो कमर्शलाइज करके वहाँ पे खुद के छोटे घर बनाए और फिर उनको रेंट आउट कर रहे हैं। और दे आर अर्निंग देयर ब्रेड एंड बटर एट द सेम टाइम यहाँ का जो कल्चर का ट्रेडिशन का टेस्ट है वो भी टूरिस्ट्स को यू नो उसमें रहने को उनको मिल रहा है एंड दे फील इट वेरी क्लोजली। आप कुछ कहना चाहते हैं बताइए। 9999904 रेडियो चुनार हर दिल की धड़कन, साहिल मुजफ्फर इन द हाउस, शोग्राम दिल की बात साहिल के साथ। द अमेजिंग म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन रेडियो चुनार, रोलिंग अप इन द बैकग्राउंड दिस ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली फॉर यू। आई विल बी राइट बैक।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

रंगीला मारुड होल द 90s का एक ऐसा सॉन्ग जिसका रिमिक्स आपने सुना, लेकिन अपने टाइम पे ये जो गाना था ये हर दिल की धड़कन बन चुका था और ये हर एक के होंठों पे ये नगमा था, क्योंकि 90s के जितने भी गाने हैं ना उनकी वाइब ही अलग थी। जैसे वाइब अलग है कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर की, आज हमने टूरिज्म सेक्टर के हवाले से बात की। इट्स ग्रेट कि टूरिज्म सेक्टर इवॉल्व हो रहा है और जो नए नए प्लेयर्स हैं जो इसमें घुसना चाहते हैं, इस सेक्टर में आना चाहते हैं, अगर आप सुन रहे हैं हमें तो आ जाइए भैया, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर में पोटेंशियल बहुत है। फिलहाल ऐसे ही गाने आप सुनते रहे, लेकिन घड़ी कर रही है शरा, इट्स टाइम टू रैप अप द शो। इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे इसी शो में जिसका नाम है दिल की बात साहिल के साथ। कहीं जाइएगा नहीं, म्यूजिक सुनते रहिए, बिकॉज़ म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन रेडियो चिनार। आज की सुहानी शाम भी आप

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: Chinar Beats with Harshi Deva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे

0: नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अवर सोसाइटी। लेट अस से हाई टू लाइफ एंड बाय टू ड्रग्स।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

το Μαρίο. Δεν ξέρω. Λεπτά δούμε ρε.

मैं हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: Jeremy. Jar Beats with Harsha Diva, only on Radio Channel 90.4 FM.
1: पानी, पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
2: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग।

अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

Jeremy. Chinar Beats with Harshadeva on Radio Chinar 90.4 FM.

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बेहतर

0: तेज जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: दिल को
3: करार आ जाए
2: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
2: दबी यादें महक जाए
3: जब भी आए
2: सुहानी शाम।
3: सुनिए सुहानी शाम
2: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4
1: FM।

0: दिल को करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: FM। दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।

0: प्रकृति।
1: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको दौड़ कुछ नहीं कहते, मगर

जिगर, चैन, आराम, राती, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए।

0: सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: FM। दिल को
0: करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।
1: हाँ।

0: चाहे भीगे तेरी चुनरिया चाहे भीगे रे चोली,
1: खेलेंगे हम

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: चाहूंगी शोर बचाओ ओ मुए ओ मुर्गे ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। हो गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: ये साहब माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुक्तम में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

0: कहाँ होते हैं।
1: अरे वाह रे मजनू,
0: लैला लैला करेगा
2: लैला, ओए लैला,
0: लैला लैला करेगा ठंडी आहें भरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।